0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट्स लगियां गंभीर सट्टा पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजर्बा है कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रिहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करते हैं जिस दे वो सचमुच ही हकदार हैं थोड़ा

0: हाँ, क्या बात है जी। जैसी बारदा लिखा होया और गाया होया खूबसूरत गीत तुसीं सुनिया। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? जुड़े हुए रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां दे नाल। ठीक ठाक हो? चढ़दी कला दे विचों गल्लां बातां चल रही जी पंजाबी लहरां दे उपर। सो खबरां दा भी समा हो गया, सो उम्मीद करते हैं तुसीं ठीक ठाक होंगे। अज्ज दी खूबसूरत शाम नूं इंजॉय कर रहे होंगे। सो अजे मैं लगता कि कुछ आई थिंक समय के थोड़े नाल राबता हुण जुड़ जाणा साडा प्रोफेसर सुदीप सिंह ढिल्लों नाल, ते फिर खबरां दे नाल जुड़ांगे।
1: Your call forwarding always has been deactivated successfully.

किताब चो। ओए बल्ले बल्ले, क्या बात है, क्या लिखता है यार। 905-673-3333 तुसी जुड़े रहना रेडियो प्रोग्राम उड़ान लेके जुड़ांगे 9 to 10 ते स्टे ट्यून्ड AM 530 सुपर हिट फ्रीक्वेंसी दे नाल। मैं थोड़ा अपना मेजबान प्रभ संधू

कोई भी सामान, चाहे वो ग्रोसरी है, चाहे वो कोई बर्तन है, चाहे कोई औजार है, चाहे गुरु साहिबान नाल संबंधित कोई फोटोग्राफ चाहिदी है, चाहे कोई हिंदू धर्म नाल संबंधित किसी देवी देवते की फोटोग्राफ चाहिदी है या पूजा समगरी चाहिदी है। घर दे विच तुसी पंजाबी थीम उसारना है, कोई विआह शादी है, कोई फंक्शन है, तो तुहानू पंजाबी कल्चर दे नाल रिलेटड हर एक चीज़ तुहानू इत्थों मिल जाएगी। घर दे विच वरती जाण वाली छोटी मोटी कोई दवाई जो फस्ट एड दे तौर ते असी अक्सर पिंडां दे विच घरां च रखदे सी, हर एक दवाई तुहानू इत्थों मिल सकदी है। ईनो, इसबगोल, जन्म कुट्टी, साफी, चंडू बाम, बदाम रोगन, अमृत तारा, कायम चूरन, एलोवीरा, जो भी बरनौल, इचगार्ड, मूव, हर एक चीज तुहानू इत्थों मिल सकदी है। फोन नंबर नोट करो 905-230-4800 9052304800। ब्रम्पटन कैश एंड कैरी पंजाबियों के कॉस्को के नाम नाल जाणिया जांदा, 60,000 स्केयर फुट के फैलिया होया विशाल स्टोर। सो गलबात अज नहीं, फोन मैनू आ नहीं रहा कोई, अज दो तीन फोन ही आए है दोस्तों मित्रों, या तो कोई मुश्किल आई ही नहीं तो या उन्होंने मुश्किलों चुटकी दे विच ही हल कर लिया, तो उन्होंने लगता ही नहीं है कि गलबात शेयर की जा सकती है, क्योंकि अजक जे दोस्त मित्र मुंडे आ रहे ना, वो तो चलो उधरों पढ़ लिख के स्टडी वीजे ते आ रहे, उन्होंने तो मुश्किल नहीं आदि। सो जे पहला दोस्त मित्र भैन भरा आए ना, जे अपने बच्चों के आन तो बाद आए, जे इतने जिन्होंने अपने बच्चों के सुपनों साकार होंदा देखने दे लई जे आए, या अपने बच्चों दे बच्चों की हैल्प दे वास्ते जे इतने आए, जिहड़े अजकल सीनियर्स क्लब दे विच सारे दोस्त मित्र मैनू बहुत सारे मिलते हैं, तो मैं गलबात शुरू भी उतों ही की सी कि अज साडे एक दोस्त ने जदों फोन आया तो उहदी गलबात दा लहजा थोड़ा जिहा इस तरह का सी, तो मैं क्या चलो इस गलबात नूं आपां अज विशे दे तौर ते डिस्कस ही कर लांगे। सो तुसीं जरूर शेयर करो जे दोस्तां मित्रां भैण भरावां नूं कोई इस तरह की गलबात इत्थे कोई मुश्किल आई, वह किस तरह की मुश्किल आई, जे आई भी तो उन्होंने किस तरह का उन्हों का सल्यूशन लभ्या। सो ये गलबात जड़िया चलदिया रहनगियां, ते नाल नाल आपां तुहानू कोई ना कोई गीत संगीत का तड़का भी लाउंदे रहांगे, ते गलबात नूं अगे कंटिन्यू फिर करांगे। एक प्यारा जिहा गीत तुहाडे नाल होर शेयर करदा मैं, थोड़ा जिहा लाइनां उहदियां

0: patients in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1515

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुन तीन लोकेशन तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबी को। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6840।
4: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
6: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
5: 416-509-1509
6: और विजिट insuranceforyou.ca।
7: ਸੀ ਹੋ ਜੇ ਏਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਲ ਤਾਂ ਡਿਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਿਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-242-3158। दुनिया विच किते भी घूमन फिरन लई या सस्ते टूर पैकेजेस लई याद रखो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दो लोकेशन तो अपनिया सेवावां प्रदान करदे ने 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा सेकंड लोकेशन 4550 एबनेजर रोड ब्रैम्पटन।
8: स्टारगेट लॉजिस्टिक्स नॉर्थ अमेरिका दी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हायर कर रहे ने एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हायर कर रहे ने एज़ेड ड्राइवर्स। जेकर तुहानू भी है कम दी पाल ता अज ही संपर्क करो स्टारगेट लॉजिस्टिक दे नाल। वर्क लोकली या क्रॉस बॉर्डर सर्व कर दे ने GTA मिडवेस्ट मॉन्ट्रियल ते नॉर्थ अमेरिका दे विच। स्टारगेट लॉजिस्टिक अज ही कॉल करो 905-564-9992 905-564-9292।
7: ओ जी हुण तुसी भी देर ना लगाओ ग्रीन वैली सुपरमार्केट आओ सुपर डील्स दे नाल ग्रोसरी ते डॉलर बचाओ। वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स मीट चिल्ड बियर डाइन इन ते टेक आउट भी कर सकते हो। देर रात तक हफ्ते दे सत्तो दिन खुलता है। तंदूरी बाइट चाट एक्सप्रेस विच बैठ के वधिया स्वादले फूड दा मजा उठाओ। वधेरे जानकारी ते ऑर्डर लई कॉल कमाओ 905-900

0: सच कहे जो होंगे।
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है,
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है,
1: गुरु दी पानी सच है, सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे होंगे ने।

सतगुर हुए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुर हुए दयाल कबहू झूरी है, सतगुर हुए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुर हुए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को मानते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर के खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके

0: यार इना इंश्योरेंसा ने धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 6473300 3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: आप पंजाबी आ गए
4: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
5: डॉक्टर कुमार डॉक्टर कुमार लगे हुए नशियां तो मुक्ति दवाउण वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडियां दे नशियां तो दूर कर दिंदे हन डॉक्टर कुमार लेडीज़ दे मर्दां दे गुप्त रोगां दा इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गां दे मोढे गोडे दुखदे आ भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार हर तरह दे इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा माल्टन गुरु घर दे कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल

0: जब तुसी भी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
2: Toronto's number one station, AM 530.
3: Punjabi Versa!

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: मित्रां दे जंक्शन ते।
5: ओ केड़े जंक्शन ते?
4: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते। रात लगियां महफलां रे
6: भाई, महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते, इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंक्वेट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM, ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-449-4040, 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
7: एक लाइफ है जिसे लव है,
8: ये कहते मुझसे सब है,
9: और एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015 Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure, 10 to sham 7 baje tak on dining and takeouts. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday, manpasand kulcha plate. Tuesday, chana bhatura. Wednesday, lajawab veg thali. Thursday, yummy haka thali. Friday, maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is Simply Indian. This sariya hi location stay. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab, Simply Indian.
1: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
2: ऐसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
4: हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
5: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुने कॉल करो 905-564-6444
4: 905-564-6444
5: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो

0: Illegal trucking is not just an industry problem. It puts our families and economy at risk. Rogue operators are putting untrained drivers behind the wheel. They dodge taxes, exploit vulnerable workers, and force honest carriers to pay the price. Join us in demanding real enforcement, real accountability, and real consequences for lawbreakers. Unsafe trucks don't stay in one province. They travel the highways that keep Canada moving. Brought to you by the Canadian Trucking Alliance's Stop Illegal Trucking campaign. Visit stopillegaltrucking.ca for details.
1: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
2: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
1: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
2: तुम्हें ये सब कैसे पता?
1: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
2: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
1: saveonenergy.ca/eap।
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.